स्ट्रेसर्स, एंटी एलर्जी या फिर रिलैक्सेंट्स. इनको समझ ही नहीं मेरे जहन की, इनको कदर नहीं मेरे जुनून की. मैं मिस्टर मोस्ट ड्रीम, दो साल हो गए नींद नहीं आई सुकून की. लेकिन इफ यू डोंट स्टैंड फॉर समथिंग, यू एंड अप फॉलिंग फॉर एनीथिंग. फैक्ट्स. एंड इफ यू डोंट लिव फॉर समथिंग, यू एंड अप डाइंग फॉर नथिंग. सुन दो.